0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: जी लिस्नर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम।
2: जी सर, इस सीडी के हवाले से और आज जो तकरीब थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
3: इकबाल डे के रेफरेंस से आज सीडी जारी किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो कलाम है उसको नौजवानों तक, इकबाल की सोच को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो लीक है। बहुत अरसे बाद कलाम इकबाल को दोबारा जो है एक नए के साथ जो है पेश किया गया है, और एक नए अपोजिशन के साथ पेश किया गया है। मैं समझता हूँ ये डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह ये काफी जारी रहेगा।
2: हम सर से उनका पैगाम लेंगे कि हजरत इलामा इकबाल का जो में पैदाइश है उस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं समझता हूँ कि जी अहमियत जो है वो इस जाहिर होती है कि शख्सियत का यौम पैदाइश है, जिनके तस्वुर की बुनियाद पर यह मुल्क हमारे वजूद में आया, और ऐसी शख्सियत जो पूरी मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए एक आइडियल की हैसियत रखती है, और ऐसी शख्सियत जिनके कलाम ने जो है पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर जो है एक एतमाद और एक अपनी पहचान, एक खुदी और एक एतमाद पैदा किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिन अहम है, और हमारी की सोच और फिक्र जो है वो इस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जो है न सिर्फ इकबाल के पैगाम को समझे, बल्कि उससे अमली रहनुमाई भी हासिल करें।
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: Hey, Khuda.
3: You're listening to Bradford Asian Radio.
4: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
12: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
11: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
12: बालियां अंगूठियां और हार,
11: जो दुल्हन करे सिंगार,
12: आज ही मामू काके की दुकान,
11: खालिस सोने की पहचान,
12: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
12: आपकी शान
11: हमारी आन,
12: क्वालिटी की पहचान।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
13: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
12: सोफी ज्वेलर्स?
13: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
12: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
14: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
15: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
14: बस ट्रक फोकलिफ्ट
16: टैक्सी लाइसेंस,
14: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
15: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
14: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
15: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
14: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
15: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
14: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548 419 678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्क़े रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
12: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: اے روح محمد شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔

0: to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
15: Bismillahir Rahmanir Rahim.
16: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا

0: Sad.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679। UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: हज और उम्रे के पैकेज के लिए सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड को हमेशा याद रखिए। आपके बाबरकत सफर के लिए तमाम तर सहूलतों के साथ मुनासिब पैकेजेस मौजूद हैं। अपनी दीगर सफरी सहूलियात के लिए याद रखिए सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता B5 सैंड हेवन अपार्टमेंट्स, नज़्द तीन तलवार, बिलमुकाबिल बॉम्बे लाइट, फैसल बैंक ब्रांच। इंतहाई मुनासिब कीमत पर आरामदेह सफर के लिए राब्ता कीजिए। फोन 565-4415-16 और 17। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए वीजे और क़याम व ताम की सहूलत भी मौजूद है। सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका एतमाद हमारा।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
9: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
10: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
9: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
10: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
9: 07548419678।
10: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم.
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड। 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3489, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

जी समीन कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पर जो बच रहा है 1413 AM पे डैब के ज़रिए ऑनलाइन और अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आप हमारी नशियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। समीरा साहब आप बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, न सिर्फ सुनती हैं बल्कि शामिल भी होती हैं, शमूलियत इख्तियार करती हैं। और हमने के जैसा हमेशा कहते हैं जब हमारे ऐसे मौज़ सामीने कराम शामिल भी होते हैं तो प्रोग्राम को हकीकतन चार चांद लग जाते हैं। तो आप आए बाहर आई वाली बात है समीरा साहिबा, खुश रहिए, शादो आबाद रहिए। आपके वैसे कहने से पहले जब हम आगे गीत क्यों करते हैं ना, जाहिर है दो चार गीत हमें क्यों करने पड़ते हैं पहले से ही लाइन में ताकि फौरन जो है गीत लगा दिया जाए, तो यकीन कीजिए आपका ख्याल जहन में आता है और मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई ना कोई गीत हम पहले से ही क्यों कर लेते हैं या कर रखते हैं। तो आज भी हमने एक गीत उनका क्यों कर लिया था इससे पहले कि आप ने फ़ोन किया, आप शामिल हुई प्रोग्राम में, लेकिन अब जाहिर है जिस गीत की आपने फरमाइश की है ना वो गीत हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं समीरा साहिबा। जाहिर है अपने इस पसंदीदा गीत को आप सुनेंगी, इन्जॉय करेंगी, ज़रूर सुनिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। तो उससे पहले क्या इन्जॉय आप इन्जॉय कर सकती हैं, हम आपके लिए क्या पेश कर सकते हैं, तो उससे पहले अमजद इस्लाम अमजद की एक छोटी सी नज़्म है वो हम आपके गोश गुजार करते हैं समीरा साहिबा, आपके नाम करते हैं। उसका उनवान है अभी तो। जी हाँ, अभी तो रुत बदलनी थी, अभी तो फूल खिलने थे, अभी तो रुत बदलनी थी, अभी तो फूल खिलने थे, अभी तो रात ढलनी थी, अभी तो ज़ख्म सिलने थे, अभी तो सरजमीने जहाँ पे एक बादल को घिरना था, अभी तो वसल की बारिश में नंगे पाँव फिरना था, अभी तो किश्ते गम में एक खुशी का ख्वाब बोना था, अभी तो किश्ते गम में एक खुशी का ख्वाब बोना था, अभी तो सैकड़ों सोची हुई बातों को होना था, अभी तो साहिलों पर एक हवाए शाद चलनी थी, अभी तो साहिलों पर एक हवाए शाद चलनी थी, अभी जो चल रही है ये तो कुछ दिन बाद चलनी थी, अभी तो रुत बदलनी थी, अभी तो फूल खिलने थे, अभी तो रात ढलनी थी, अभी तो ज़ख्म सिलने थे, अभी तो सरजमीने जहाँ पे एक बादल को घिरना था, अभी तो वसल की बारिश में नंगे पाँव फिरना था, अभी तो किश्ते गम में एक खुशी का तो रुत बदलनी थी, अभी तो फूल खिलने थे, अभी तो रात ढलनी थी, अभी तो ज़ख्म सिलने थे, अभी तो सरजमीने जहाँ पे एक बादल को घिरना था, अभी तो वसल की बारिश में

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: जी सा मैंने कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, मेलोडियस गीत था। अब थोड़ा सा मूड को अपलिफ्ट करते हैं ज़रा सा, और ये वाला गीत सुनते हैं। तो देखिए ये गीत थोड़ा सा एक क्या कह लीजिए कि आपके हो सकता है मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करे। थोड़ा सा आप अगर सुस्त महसूस कर रहे हैं ख़ुद को, तो थोड़े से आप अलर्ट हो जाएंगे, थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे। लीजिए सुनिएगा।
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.

जी हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को गीत बहुत अच्छा लगा हो, उनका थोड़ा सा मूड भी अपलिफ्ट हो गया हो, ज़रा धूम धड़के वाला थोड़ा सा गीत, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा था। तो अब एक और खूबसूरत सा गीत आप सामाईन के नाम पेश करते हैं। जुनेद साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को सुन रहे हैं। आपने कहा कि जी कोई अच्छा सा गीत आपके लिए लगा दिया जाए, काम काज में मसरूफ़ हैं आप, साथ साथ आप रेडियो सुन रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आने वाला जो गीत है वो हम जुनेद साहब आपके नाम करेंगे, कि उम्मीद तो यही करते हैं कि पसंद करेंगे आप। लीजिए इस गीत को सुनिएगा, पसंद नहीं आया तो फिर बता दीजिएगा, हम कोई और अच्छा सा गीत जो है वो आपके लिए पेश कर देंगे। तो सुनिए इस गीत को।

0: Master Jewelers, 93 Hodson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
4: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 फुटलैंड ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
7: UK.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider. Helping you secure your future.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
13: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
14: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
13: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मेनिंगम सुपर स्टोर मेनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मेनिंगम सुपर स्टोर
14: मेनिंगम सुपर स्टोर
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
10: आपके दिलों में रस खोलने
8: جی معزز سامعین کرام، سماعت فرما رہے ہیں آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 104.3 AM پہ، ڈیپ کے ذریعے بھی یہ نشریات اب تک پہنچتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آن لائن بھی ہماری نشریات جو ہیں وہ پوری دنیا میں آپ سن سکتے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا جو ایپ ہے فری آف کاسٹ ہے، موبائل ایپ، اس کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمہ اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب بس پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے، چند لمحات باقی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں یہاں پہ۔ ابھی بھی آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر 01274306677، جی ہاں 01274306677، اس نمبر کے ذریعے آپ اپنی فرمائش یا ڈیڈیکیشن ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیجیے اب ایک اور بہت خوبصورت سا گیت سنتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا اس گیت کو سنے ہوئے، تو آج سوچا کہ چلیے اس کو بھی آج سن لیتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے بعض اوقات بہت دیر کے بعد جب کوئی آپ بھولا بسرا پرانا خوبصورت سا، بہت پرانا خواہ وہ بے شک نہ ہو، لیکن بس وہ کانوں کو بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو پھر بڑے عرصے کے بعد جب آپ اس میلوڈیس گیت کو سنتے ہیں تو پھر آپ کے کانوں کو زیادہ بھلا معلوم ہوتا ہے۔ لیجئے اب اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا۔

लिखता है, खा गीतकार गीत लिखता है, धुन बनाने वाला धुन बनाता है, उसके ऊपर जो परफॉर्म कर रहा है जो भी फ़नकार है वो जो परफॉर्मेंस देता है, तो ये सब चीज़ें तख्लीक के ज़ुमरे ही में आती हैं। तो वो कोई आसान अमल नहीं होता। तो जब आप एक चीज़ को दिन में 10-15 मरतबा करना पड़े तो फिर वो तख्लीकारी कहीं दूर चली जाती है, बस सिर्फ पैसा ही पैसा नज़र आता है। तो पैसे की झनकार बज़ाहिर अच्छी लगती है वक्ती तौर पे, लेकिन उसका कुछ ख़ास असर नहीं होता, ये जहन में रखना चाहिए। बहरहाल बात हो रही थी गीतों की, तो अब ये जो आने वाला गीत है किसके नाम करेंगे? जी हाँ, महबूब इलाही साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, प्रोग्राम में आप शामिल हुए, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून। आने वाला गीत आपके लिए और आपकी जानिब से जितने भी आपके दोस्त अहबाब इस वक्त ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को सुन रहे हैं, उनमें मोहम्मद तारिक जुल्फी साहब हैं, उनमें चौधरी मुजफ्फर साहब हैं आपके, उनमें जनाब चौधरी रुखसार साहब हैं मानचेस्टर से, उनका आज फ़ोन शायद आया, हमसे बात नहीं हो पाई या बहुत मसरूफ़ रहे, फ़ोन कर नहीं पाए, लेकिन वैसे अमूमन वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। साथ आपके दोस्त हैं कौन? जी हाँ, सुल्तान महमूद कराची वाला, उनके नाम तो जितने भी आपके महबूब इलाही साहब दोस्त अहबाब हैं उनके और आपके नाम ये हम गीत करने जा रहे हैं। लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा।

जी सामिन कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि पसंद किया होगा। बहुत अच्छा लगा, पुराना गीत था और क्या खूबसूरत शायरी थी। शायरी से शाइस्ता मुफ्ती की एक खूबसूरत सी गज़ल हम आपके नाम आपके गोश गुजार करते हैं। और जरका साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश इस गीत को भी पसंद करने के लिए। अभी तक आप प्रोग्राम में हमारे साथ साथ हैं, तहे दिल से जरका साहिबा आपके मशकूर व ममनून। और ये शाइस्ता मुफ्ती की लिखी हुई जो शायरी है ना, ये भी आपके नाम करते हैं। वो लिखती हैं, रेत पर नक्श जमाते हुए मर जाते हैं, जिंदगी तुझ से निभाते हुए मर जाते हैं। जिंदा रहना है किसे, किसको गुजर जाना है, लोग तकदीर मिलाते हुए मर जाते हैं। दीदाए शौक तेरी दीदावरी के सदके, लोग हंसते हैं हंसाते हुए मर जाते हैं। क्या खूबसूरत ये गीत है। दीदाए शौक तेरी दीदावरी के सदके, लोग हंसते हैं हंसाते हुए मर जाते हैं। किस कदर ख्वाब से बोझल है निगाहें उसकी, बज़्म में आंख मिलाते हुए मर जाते हैं। जानिए कौन कहाँ किससे तकाजा कर ले, जानिए कौन कहाँ किससे तकाजा कर ले, जान पर कर्ज उठाते हुए मर जाते हैं। जो बात अभी हो रही थी ना अशफाक अहमद साहब के जाविये में, भी कर्ज ही की बात हुई। खैर, वो रुपए पैसों के कर्ज की बात थी, यहाँ पे किस कर्ज की बात हो रही है। बहुत से कर्ज होते हैं सामीन कराम, किसी का एहसान होता है, किसी का रुपए पैसों का कर्ज है, किसी का जान का कर्ज है, किसी के माल का कर्ज है, किसी की इज्जत का कर्ज है, किसी के वादों का कर्ज होता है। तो बहुत से कर्ज होते हैं जिंदगी में। तो शाइस्ता मुफ्ती कहती हैं, जानिए कौन कहाँ किससे तकाजा कर ले, जान पर कर्ज उठाते हुए मर जाते हैं। फिर उसी सुबह की रंगीन हसीन साथ में हिजर की रात बुझाते हुए मर जाते हैं। हैं मेरे दोस्त मगर शिकवा कोई क्या कीजिए, हैं मेरे दोस्त मगर शिकवा कोई क्या कीजिए, जख्म जो दिल पे लगाते हुए मर जाते हैं। जिनका दावा है मसीहाई शनासाई का, जिनका दावा है मसीहाई शनासाई का, रोने वालों को रुलाते हुए मर जाते हैं। हाय इस जीस्त का हंगाम के फुर्सत न मिली, और ये तो सभी का रोना है। हर किसी से पूछिए तो वो कहता है जी वक्त ही नहीं मिला, बहुत मसरूफियत है, माजरत। तो वो यही लिखती हैं, हाय इस जीस्त का हंगाम, यानी ज़िंदगी का ये जो हंगामा है, कि फुर्सत ना मिली, बोझ एक दिल पे उठाए हुए मर जाते हैं। क्या खूबसूरत इन्होंने गज़ल लिखी शाइस्ता मुफ्ती साहिबा ने। जो आजकल के हालात वाक़ियात हैं, एक लिहाज से देखा जाए तो ये उन्हीं की तस्वीर खींचती नज़र आती हैं। बहरहाल सामीन कराम, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त भी हम लें। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी बरोज़ सोमवार इसी तरह 10 से 1 के दौरान। तो उम्मीद करते हैं कि आज का इंतखाब आपको पसंद आया होगा, जिस तरह से भी था, और जितने हमारे सामीन कराम प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से मशकूर। हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारा और आपका अल्लाह हामियो नासिर। अल्लाह हाफिज़।

0: Beautiful Asian Radio on 1413 AM.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम,

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 714-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, VD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 40।
5: You're listening to Ashen Radio.
6: Ashen Radio on 1430.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंग होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मेनिंगम सुपर स्टोर।
2: मेनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

ये ब्रेडफोर्डेशन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज़ में आना चाहें, इसकी इज्जत व तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 30 66 77।

बेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सस्तीन वादी में दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। जो मेहमान ने ग्रामी बज़्म में शामिल हो चुके हैं उनके स्माय ग्रामी हैं रियासत साहब सरे फहरिस्त हैं आप हडर्सफील्ड से हमारे हमरा मौजूद हैं, वक़ार साहब वेकफील्ड से, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, सुमेरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से, डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से और भगत सिंह साहब भी तशरीफ पा चुके हैं लीज की हसीन फजाओं से। अब हम आपको लिए चल रहे हैं हडर्सफील्ड, जहाँ रियासत साहब अपने अहल खाना के हमराह मौजूद है। उनका कहना यह है कि जो मौसम आपने बयान किया वो तकरीबन हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। और आज एक बात क्लियर हो गई, उन्होंने एक गीत सुनना चाहा था और वो हमेशा ये समझते रहे कि ये गीत मेहंदी हसन की आवाज़ में है, जबकि दोस्तों ये उनके शागिर्द ग़ुलाम अब्बास की आवाज़ में है। तो आइए हडर्सफील्ड करते हैं और तोहफा पेश करते हैं। रियासत साहब आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रैडफोर्ड, 9627229627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
9: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिल्सब्रा, जहाँ पर हमारी ब्रैडफोर्ड 3 से प्यारी सी बिटिया सुमैरा प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं और अपनी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम ये खूबसूरत गीत करना चाहती हैं। उनका कहना यह है कि रिफत अंकल, मैं इस वक्त चूज़ा बना रही हूँ, भिंडी तोरी की भाजी बना रही हूँ और लस्सी नी छीट, हमें नहीं पता क्या होता है, बहरहाल खिलाओगी तो पता चलेगा बेटिया, लस्सी नी छीट बना रही हैं या छीट कुछ पता नहीं, बहरहाल। और कहती हैं कि मैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने खिड़कियाँ खोल रखी हैं, भाई यहाँ भी यही अहवाल है, मैंने स्टूडियो का दरवाज़ा भी खोल रखा है, पीछे से खिड़की भी खोल रखी है और ये देखो ये हमारा फैन भी ऑन है फुल स्पीड से, फिर भी गर्मी का एहसास हो रहा है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी बिटिया सुमैरा ब्रैडफोर्ड 3 आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, प्यार से, सेहत से और अमन के साथ रखे और आपकी ये दोस्ती अपनी कज़न्स के साथ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इसे किसी की नज़र ना लगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया था आगाज़ प्रोग्राम में, हमारे हमराह मौजूद हैं जनाबे भगत सिंह साहब, उन्होंने क्वाइट अनयूजुअल फरमाइश की है, आपको पता है वो गीत कैसे कैसे ढूंढ कर लाते हैं। मोहब्बत भरा सलाम उनका मैं आपकी खिदमत में पहुंचा चुका हूं लीड से, लेकिन उनका तोहफा इंशाल्लाह इस तोहफे के बाद उनकी नज़र करूंगा, क्योंकि वक़ार मियां तशरीफ़ ला चुके हैं मगर आज वो अपने अहले खाना के साथ ही गुजारेंगे, क्योंकि रात स्कॉटलैंड से उनकी वापसी काफ़ी ताखीर से हुई थी। कहते हैं कि आज मैं 11 बजे तो उठा हूँ, क्या बात है यार, लकी हो। चलो अब हम चलते हैं आपको लेकर मिडिल्सब्रा और प्यारी प्यारी कजन्स, लव यू ऑल, आपकी प्यारी सी कज़न हमारी प्यारी सी बिटिया सुमैरा का तोहफा आपकी मोहब्बतों के नाम, कबूल कीजिए।

दोस्तों, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। दो नए मेहमान हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं। तशरीफ़ लाए हैं हमारे मोहतरम लिसनर सिराज मुनीर साहब, आप डंकास्टर सिटी से हमारे हमराह मौजूद हैं। तशरीफ़ लाए हैं हमारे खूबसूरत लिसनर और कॉलर शकील भाई, आप तशरीफ़ लाए हैं बंडे से। और इन दोनों अहबाब ने आप तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत से लबरेज़ सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफ़ा भी भेजा है। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर भगत सिंह साहब के तोहफे की जानिब। भगत सिंह साहब हमें इस वक्त लीड्स में सुन रहे हैं। हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उनका मोहब्बत भरा सलाम तो हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। उन्होंने एक गीत सुनना चाहा है। ओरिजिनली वो गीत मलका तरन्नुम नूरजहाँ, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए की आवाज़ में है, लेकिन उन्होंने ये गीत सज्जाद अली की आवाज़ में सुनना चाहा है, जो एक बेइंतहा बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। गो इनके वालिद गुलकारी में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ विलन्स में उनका शुमार होता था साजन। ये साजन के साहबजादे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़, सहर अंगेज़ आवाज़ से इन्हें नवाजा है, और क्लासिकल की सूझबूझ इनकी और जो आजकल के सिंगर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो आइए, हम ख्वाहिश का एहतराम करते हैं भगत सिंह साहब की और उनका पसंदीदा गीत सज्जाद अली की आवाज़ में सुनवाते हैं। आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
15: और दोस्तों, अब वक्त हुआ है वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसमें कोई शायबा नहीं है। और हमारी ख्वातीन शुआरा इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं अदब को फ़रोग देने में। हमारे सेगमेंट में हम खराज अकीदत पेश किया करते हैं अपनी उन शायरात को जो मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं। जो मौजूद हैं उन्हें हम खराज तहसीन और जो मौजूद नहीं उन्हें खराज अकीदत पेश किया करते हैं। आज भी हमने एक बहुत ही खूबसूरत शायरा का इंतखाब किया है जिनका ताल्लुक कलकत्ता से है। बहुत खूब कहती हैं और सामईन को मशहूर कर देती हैं अपने खूबसूरत कलाम से। दुनिया के चार कोनों में अपने फ़न का मुजाहरा कर चुकी हैं। हम दावत दे रहे हैं, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, मारूफ मकबूल हर दिल अजीज शायरा जी। ये शायरा हैं नगमा नूर, जिन्हें हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा नगमा नूर।
6: तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है।
16: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
6: मतलब मुलाहिजा फरमाएं। तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है, मोहब्बत से ज्यादा है इबादत से जरा कम।
16: अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे जीती रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, जीती रहिए।
6: बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जिक्र होठों पर तिलावत से जरा कम है, मोहब्बत से ज्यादा है
16: इबादत
6: से जरा कम है। यहाँ जल्लाद भी कातिल भी मुनसिफ भी गवाही दे। यहाँ जल्लाद भी कातिल भी मुनसिफ भी गवाही भी, जिसे हम घर समझते हैं अदालत से जरा कम है।
16: वाह।
6: यहाँ जल्लाद भी कातिल भी मुनसिफ भी गवाही भी,
16: वाह, वाह, वाह,
6: जिसे हम घर समझते हैं अदालत से जरा कम है।
16: वाह।
6: और बहुत प्यारा से एक शेर के, मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े।
16: अरे वाह।
6: मेरी दीवार पर
16: वाह, वाह, वाह, वाह,
6: कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का वादा भी कयामत से जरा कम है।
16: वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा वाह वाह वाह वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जीती रहिए।
6: मेरी दीवार पर
16: मेरी कैलेंडर हो गए बूढ़े,
6: कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े,
16: वाह वाह वाह,
6: मेरी दीवार पर कितने कैलेंडर हो गए बूढ़े, तेरे आने का वादा भी कयामत से जरा कम है। और ये मतलब भी मुलाहिजा फरमाएं कि किसी रिश्ते में झगड़ा बारह अच्छा नहीं होता, किसी रिश्ते में झगड़ा
16: बारह
6: अच्छा नहीं होता, मुसलसल एक जमी पर जलजला अच्छा नहीं होता।
16: वाह वाह वाह वाह वाह,
6: किसी रिश्ते में झगड़ा बारह अच्छा नहीं होता, मुसलसल एक जमी पर जलजला अच्छा नहीं होता। ताल्लुक तोड़ने से कबल ठंडे जहन से सोचो, ताल्लुक तोड़ने से कबल ठंडे जहन से सोचो, कि गुस्से में कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता।
16: वाह वाह वाह वाह वाह,
6: ताल्लुक तोड़ने से कबल
16: वाह,
6: ताल्लुक तोड़ने से कबल ठंडे जहन से सोचो, कि गुस्से में कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता, कि गुस्से में कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाएं कि बहुत पाबंदियां बच्चों को बागी कर भी सकती हैं, बहुत पाबंदियां
16: बच्चों को बागी कर भी सकती हैं,
6: बड़ों का सख्त लहजा जा बजा अच्छा नहीं होता।
16: वाह वाह वाह वाह,
6: बहुत पाबंदियां बच्चों
16: अच्छा
6: को
16: है, वा, वा, वा।
6: बहुत पाबंदियां बच्चों को बागी कर भी सकती हैं, बड़ों का सख्त लहजा जा बजा अच्छा नहीं होता, बड़ों का सख्त लहजा जा बजा अच्छा नहीं होता। और मतलब हाजिर करती हूँ कि तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाजा होता है,
16: तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाजा होता है,
6: समुंदर चुप रहे तो खतरे का अंदाजा होता है।
16: वाह वाह वाह वाह,
6: तुम्हारी खामोशी से गुस्से का अंदाजा होता है,
16: समुंदर चुप रहे
6: तो खतरे का अंदाजा होता है, किसी की गुफ्तगू से उसकी नीयत झांक लेती है। शेर मुलाहिजा फरमाए, किसी की गुफ्तगू से
16: उसकी
6: नीयत झांक लेती है, किसी से मिलके उसके शजरे का अंदाजा होता है।
16: वाह वाह,
6: किसी की गुफ्तगू से
16: वाह वाह वाह,
6: किसी की गुफ्तगू से उसकी नीयत झांक लेती है, किसी से मिलके اس کے شجرے کا اندازہ ہوتا ہے۔
16: واہ!
6: یہ قصہ عام ہے کہ بیٹی ماں کو ڈانٹ دیتی ہے، یہ قصہ عام ہے کہ بیٹی ماں کو ڈانٹ دیتی ہے، اسے ماں بن کے ہی صدمے کا اندازہ ہوتا ہے۔
16: ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے جیتی رہیے جیتی رہیے جیتی رہیے جیتی رہیے جیتی رہیے جیتی رہیے جیتی رہیے واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
6: بہت شکریہ۔ یہ قصہ عام ہے کہ بیٹی ماں کو ڈانٹ دیتی ہے، اسے ماں بن کے ہی صدمے کا اندازہ ہوتا ہے، اسے ماں بن کے ہی صدمے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور میری آنکھوں کی جیسی ہو گئی ہے،
16: میری آنکھوں کی جیسی ہو گئی،
6: تیری تصویر دھندلی ہو گئی ہے۔
16: ارے واہ واہ واہ واہ،
6: میری آنکھوں کی جیسی ہو گئی،
16: تیری تصویر دھندلی ہو گئی،
6: تیری تصویر دھندلی ہو گئی ہے۔ کہاں اب گاؤں میں وہ سوندھی خوشبو، سڑک جو تھی وہ پکی ہو گئی ہے۔
16: واہ واہ واہ،
6: کہاں
16: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
6: گاؤں میں وہ سوندھی خوشبو، سڑک جو تھی وہ پکی ہو گئی ہے۔
16: واہ واہ واہ!
6: اور میں بیٹیوں کے تعلق سے شعر آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ سڑک جو تھی وہ پکی ہو گئی ہے، صدا چلتی ہے کاندھوں کو جھکا کر،
16: صدا
6: چلتی ہے کاندھوں کو جھکا کر، وہ جب سے ماں سے لمبی ہو گئی۔
16: ارے ارے ارے ارے ارے ارے، اچھا واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
6: صدا چلتی ہے کاندھوں کو جھکا کر،
16: واہ واہ،
6: وہ جب سے ماں سے لمبی ہو گئی ہے۔
16: واہ!
6: بیٹیوں کی بات کی ہے میں نے، بیٹے کے تعلق سے بھی ایک شعر کہہ دوں کہ صدا چلتی ہے کاندھوں کو جھکا کر، وہ جب سے ماں سے لمبی ہو گئی ہے، ذرا سا باپ سے لمبا ہوا کیا، ذرا سا باپ سے لمبا ہوا کیا، تیری آواز اونچی ہو گئی ہے۔
16: ارے واہ واہ واہ واہ،
6: صدا چلتی ہے کاندھوں کو جھکا کر، وہ جب سے ماں سے لمبی ہو گئی
16: ہے،
6: ذرا سا باپ سے لمبا ہوا کیا، تیری آواز اونچی ہو گئی ہے، تیری آواز اونچی ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سب۔ اور مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا اندازِ تکلم مجھے بہکا دے گا، اس کا اندازِ تکلم مجھے بہکا دے گا، جھوٹ بھی ایسے کہے گا مجھے جھٹلا دے گا، اس کا اندازِ تکلم مجھے بہکا دے گا،
16: جھوٹ بھی ایسے کہے گا مجھے جھٹلا دے گا،
6: جھوٹ بھی ایسے کہے گا مجھے جھٹلا دے گا۔ وہ طبیعت کا تو خوددار بہت ہے لیکن، وہ طبیعت کا تو خوددار بہت ہے لیکن، میری خوشیوں کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دے گا۔
16: بہت اچھا ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کیا سلیقے سے گایا ہے! واہ واہ!
6: طبیعت کا تو خوددار بہت ہے لیکن، میری خوشیوں کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دے گا۔ اس قدر اس کی وفاؤں پہ یقین کرتی ہوں، اس قدر اس کی وفاؤں پہ یقین کرتی ہوں، مانگ لے گا وہ مجھے حور کو ٹھکرا دے گا۔
16: واہ واہ واہ واہ واہ واہ!
6: اس قدر اس کی وفاؤں پہ یقین کرتی ہوں،
16: واہ،
6: مانگ لے گا وہ مجھے حور کو ٹھکرا دے گا، مانگ لے گا وہ مجھے حور کو ٹھکرا دے گا۔ اور مطلب یوں ہوا ہے کہ کسی کے کہنے سے اچھا برا نہیں ہوتا،
16: واہ،
6: کسی کے کہنے سے اچھا برا نہیں ہوتا، ہر ایک شخص یہاں آئینہ نہیں ہوتا، کسی کے کہنے سے اچھا برا نہیں ہوتا، ہر ایک شخص یہاں آئینہ نہیں ہوتا۔ حسن مطلب سماعت فرمائے کہ نئے لباس سے چہرہ نیا نہیں ہوتا، نئے لباس سے چہرہ نیا نہیں ہوتا، اکڑ کے چلنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔
16: واہ!
6: نئے لباس سے چہرہ نیا نہیں ہوتا، اکڑ کے چلنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، تمام راہیں تیری کاش میرے گھر آتی، तमाम राहें तेरी काश मेरे घर आती, फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं होता। तमाम राहें तेरी काश मेरे घर आती, फिर उसके बाद कोई रास्ता नहीं होता। वो बेपनाह मोहब्बत तो मुझसे करता है,
16: वो बेपनाह
6: मोहब्बत तो मुझसे करता है, मगर वो खुद से ज्यादा मेरा नहीं होता।
16: अरे वाह वाह।
6: वो बेपनाह मोहब्बत तो मुझसे करता है, मगर वो खुद से ज्यादा मेरा नहीं होता। एक मतलब हाजिर करना चाहती हूँ, ख्वातीन यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, बेशतर ख्वातीन इस दौर से, इस गमनाक दौर से गुजरी होंगी, मैं ख़ुद भी गुजरी हूँ। मतलब समाज फरमाएं कि खुशी का शीश महल थर थरा के टूट गया, खुशी का शीश महल थर थरा के टूट गया, हमारी गोद में जब चांद आके टूट गया। खुशी का शीश महल थर थरा के टूट गया, हमारी गोद में जब चांद आके टूट गया। और ये बहुत अच्छा सा एक शेर सुनाना चाहती हूँ कि तमाम उम्र की मेहनत से जो नहीं टूटा, तमाम उम्र की मेहनत से जो नहीं टूटा, वो बूढ़ा बाप वसीयत सुना के टूट गया।
16: अच्छा है, अच्छा है, जीती रहिए, खुश रहिए, बहुत अच्छा है, वाह
6: जी, बहुत शुक्रिया। खुशी का शीश महल थर थरा के टूट गया, हमारी गोद में जब चांद आके टूट गया, वो बूढ़ा बाप तमाम उम्र की मेहनत से जो नहीं टूटा, तमाम उम्र की मेहनत से जो नहीं टूटा, वो बूढ़ा बाप वसीयत सुना के टूट गया। इसी कबील के एक और शेर सुनाना चाहती हूँ, इसलिए मतलब ही सुना देती हूँ कि ज़मीन तंग सही मेरे नाम कुछ तो करो, ज़मीन तंग सही मेरे नाम कुछ तो करो, तुम अपने दिल में मेरा इंतज़ाम कुछ तो करो, तुम
16: अच्छा
6: अपने दिल में मेरा इंतज़ाम कुछ तो
16: अच्छा
6: करो।
16: अच्छा
6: ज़ईफ़ बाप की कब तक कमाई खाओगे, ज़ईफ़ बाप की कब तक कमाई खाओगे, जवान हो गए अब काम धाम कुछ तो करो।
16: वाह वाह
6: जी, बहुत शुक्रिया। ज़ईफ़ बाप की कब तक कमाई खाओगे, जवान हो
16: क्या मजे के शेर आप सुना रही हैं, हैं तो बिटिया जैसी लेकिन बातें अम्मा जैसी करती हैं।
6: और मतलब और सब दुआएं हैं आपके।
16: हाँ जीती रहिए, बड़ी खुश रहिए।
6: मतलब और चंद अशअर और सुने के, बहार जेठ खजा मेघ झूठे सब मौसम, बहार जेठ खजा मेघ झूठे सब मौसम, चले भी आओ के हैं भीगे भीगे सब मौसम, चले भी आओ के हैं भीगे भीगे सब मौसम, वो मुझ में कौन सा मौसम तलाश करता है, वो मुझ में कौन सा मौसम तलाश करता है, उसी से हो के तो आते हैं मेरे सब मौसम।
16: वाह वाह,
6: वो मुझ में कौन सा मौसम तलाश करता है, उसी से हो के तो आते हैं मेरे सब मौसम, जरा सताऊंगी छेड़ूंगी फिर मनाऊंगी,
16: वाह
6: जरा सताऊंगी छेड़ूंगी फिर मनाऊंगी, मैं एक साथ नहीं दूंगी सबके सब मौसम।
16: अरे अरे अरे वाह वाह वाह, अरे अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह वाह, अरे वाह वाह
6: जी हाजिर,
16: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अभी पढ़िए
6: जी, मैं हाजिर करती हूं,
16: जरा सताऊंगी छेड़ूंगी,
6: जरा सताऊंगी
16: वाह वाह
6: छेड़ूंगी फिर मनाऊंगी, मैं एक साथ नहीं दूंगी सबके सब मौसम।
16: बहुत अच्छा, जीती रहिए, जीती रहिए।
6: मैं एक साथ नहीं दूंगी सबके सब मौसम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आईना खुद को बना लूं उसे चेहरा कर दूं, आईना खुद को बना लूं उसे चेहरा कर दूं, इस कदर चाहूं उसे उसको ही दुनिया कर दूं, आईना खुद को बना लूं उसे चेहरा कर दूं, इस कदर चाहूं उसे उसको ही दुनिया कर दूं, तेरा दिल सख्त है फौलाद की मानंद तो क्या, तेरा दिल सख्त है फौलाद की मानंद तो क्या, मैं भी पारस हूं उसे छू लूं तो सोना कर दूं।
16: वाह
6: तेरा दिल सख्त है फौलाद की मानिंद तो क्या, मैं भी पारस हूँ उसे छू लूँ तो सोना कर दूँ। और ये शेर ख़ास तौर पर मुलाहज़ा फरमाएं कि मैं भी पारस हूँ उसे छू लूँ तो सोना कर दूँ, मेरी ममता के मुकाबिल तेरी शफ़क़त क्या है।
16: मेरी ममता के मुकाबिल
6: तेरी शफ़क़त क्या है, अपनी कीमत जो बता दूँ तुझे सस्ता कर दूँ।
16: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह, जीत रही है।
6: मेरी ममता के मुकाबिल तेरी शफ़क़त क्या है, अपनी कीमत जो बता दूँ तुझे सस्ता कर दूँ। तलख लहजे में निखरती है मोहब्बत उसकी,
16: वाह।
6: तलख लहजे में निखरती है मोहब्बत उसकी, मैंने चाहा भी नहीं नीम को मीठा कर दूँ।
16: वाह।
6: तलख लहजे में निखरती है मोहब्बत उसकी, मैंने चाहा भी नहीं नीम को मीठा कर दूँ। और एक सच्चा सा शेर के, अब भरोसे का नहीं रह गया रिश्ता कोई,
16: अब भरोसे का नहीं रह गया रिश्ता कोई,
6: नाम ले लूं तो कई चेहरे को नंगा कर।
16: बहुत अच्छा है, जीती रहिए।
6: अब भरोसे का नहीं रह गया रिश्ता कोई, नाम ले लूं तो कई चेहरे को नंगा कर दूं। और मैं एक नज्म सुनाना चाहती हूँ।
16: ये हमारे दोस्त की बिटिया है तो इसके बाप मेरे दोस्त हैं।
6: मैं
16: अक्सर मुझसे लोग कहते हैं साहब आप शराब नहीं पीते, तो हम कहते हैं नहीं सर मेरी दोस्ती अंगूर से है, जिसकी दोस्ती अंगूर से होती है बेटी से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है, इसलिए मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो बहरहाल जीती रहिए, बहुत अच्छा। और कुछ शेर सुना दीजिए।
6: मैं एक नज्म चाहती हूँ।
16: जी आप नहीं बेटी, जीती रहिए।
6: तो क्योंकि यहाँ खवातीन जो हैं वो तशरीफ रखती हैं, तो मैं उनके जज्बात की अकासी करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि औरत जब मोहब्बत करती है तो कितनी वफादारी होती है, उसके जज्बात में ईमानदारी होती है और उसके तलब में बड़ी इनकसारी होती है।
16: 11,000 मेहर था मेरा, 11,00,000 खा चुकी हैं अब तक वो।
6: आप जी, मैं ग्यारह लाख के एक एक मिसरे आपकी नजर कर रही हूँ। ये आंटी की तरफ से है, आप सुने। नज्म का उन्वान है गुजारिश। मैं तेरे साथ रहूं तू जहां कहीं भी रहे। बहुत प्यारी सी नज्म है, आप बड़े इत्मीनान से सुने। मैं तेरे साथ रहूं तू जहां कहीं भी रहे, किसी भी शक्ल में तू अपने पास रख ले मुझे। मैं तेरे पास रहूं तू जहां कहीं भी रहे, किसी भी शक्ल में तू अपने पास रख ले मुझे। तू अपने कुर्ते का मुझको बटन बना ले कभी, तू अपने कुर्ते का मुझको बटन बना ले कभी, कभी मैं कोट का तेरे ब्रोच बन जाऊं। तू अपने कुर्ते का मुझको बटन बना ले कभी, कभी मैं कोट का तेरे ब्रोच बन जाऊं। मुझे गले से लगा ले तू टाई की सूरत, मैं तेरी रूह में परफ्यूम सी उतर जाऊं। मुझे गले से लगा ले तू टाई की सूरत, मैं तेरी रूह में परफ्यूम सी उतर जाऊं। मुझे बना के तू रूमाल जेब में रख ले, मुझे बना के तू रूमाल जेब में रख ले, तू अपने हाथ की मुझको घड़ी बना ले कभी।
16: वाह वाह।
6: मुझे बना के तू रुमाल जेब में रख ले, तू अपने हाथ की मुझको घड़ी बना ले कभी। मैं तेरे पास रहूं ऐसे जैसे मोबाइल, मैं तेरे पास रहूं ऐसे जैसे मोबाइल, मैं तेरे साथ तेरा लैपटॉप बन के रहूं। मैं तेरे पास रहूं ऐसे जैसे मोबाइल, मैं तेरे साथ तेरा लैपटॉप बन के रहूं। तेरे बगैर मेरा घर में जी नहीं लगता, तेरे बगैर मेरा घर में जी नहीं लगता, तू अपने पैर की जूती बना के रख ले मुझे। बहुत शुक्रिया।
15: दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहमान शायरा। सेगमेंट था वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। मोहतरम मोहतरमा नगमा नूर साहिबा, بے انتہا خوبصورت سوچ، فکر اور احساس ہو رہا ہے ان کی شاعری کو سن کے کہ آنے والا کل ان کا ہوگا۔ ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں نذیر احمد صاحب، لیا پنجاب پاکستان سے، ہمیشہ کی طرح ان کا وہی پیغام کہ تمام سامعین اور ناظرین کو ہمارا محبت بھرا سلام، صدا سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صدا سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بھی ڈھیر و دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ سات سمندر پار سے، لیا پنجاب پاکستان سے آ کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ ویسے تو کھاڑیاں گجرات پاکستان سے ہمارے ہمراہ پردیسی مجی صاحب بھی موجود ہیں، جنہوں نے محترمہ نغمہ نور کے کلام کو بے انتہا سراہا اور پسند فرمایا ہے، بہت نوازش۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی اس حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے پروگرام غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274306677۔ غزل اس نے چھیڑی کا یہ آخری پروگرام ہے۔ کل سے محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے احترام میں ہم 10 دن تک آپ کی خدمت میں صرف اسلامی تحائف پیش کریں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کو اور ان کی قربانی کی یادیں تازہ کریں گے۔ 2400 گھنٹے ہمارے ہاں سے خصوصی نشریات محرم الحرام کے احترام میں 10 دن تک جاری رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔

बढ़ते हैं कमर्शियल की जानिब, और कमर्शियल के बाद हम आपको लिए चलेंगे ये अपने बर्नली, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब, और उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे। शकील भाई, आपकी आमद का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत से रखे, सलामत रखे और नज़र बद से बचाए।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: और हस्ब वादा अब हम आपको लिए चल रहे हैं बर्नले, जहाँ शकील साहब मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि आज हज़रत इब्ने इंशा की सालगिरह है। हज़रत इब्ने इंशा तो हमसे मुद्दत हुई रुखसत हो गए, हम उन्हें सालगिरह के तोहफे के तौर पर दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। सो खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं हमारे मोहतरम शकील साहब बर्नले से, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस सहर अंगेज़, दिलनशी, मनमोहनी और ख़ूबसूरत आवाज़ में ये कलाम है हज़रत इब्ने इंशा का, वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। हज़रत अमानत अली ख़ान साहब, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। तो आइए चलते हैं खराज अक़ीदत लेकर इब्ने इंशा का ख़ूबसूरत कलाम ख़ान साहब उस्ताद अमानत अली ख़ान मरहूम की आवाज़ में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। अब हम आपको लिए चल रहे हैं वेकफील की हसीन फ़ज़ाओं में, जहाँ हमारे मोहतरम वक़ार मियाँ अपने अहल खाना के साथ प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। कहते हैं कि आज मैं इंशाअल्लाह तमाम दिन अपने अहल खाना के साथ ही गुजारूंगा और आपका पूरा प्रोग्राम हम घर में बैठकर इत्मीनान से सुन रहे हैं, बहुत लुत्फ आ रहा है। ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है। अल्लाह ताला आपको और आपकी हस्ती मुस्कुराती फैमिली को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तोहफा मैं लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए। आमद का बहुत शुक्रिया वक़ार मियाँ।

0: दोस्तों, इससे पहले कि हम जनाबे नज़ीर साहब लिया पंजाब पाकिस्तान में नज़ीर अहमद साहब आपका तोहफ़ा आपकी नज़र करें, हम आप सब की मुलाकात एक बहुत खूबसूरत लिसनर से करा रहे हैं जो बनले से हमारे हमरा मौजूद हैं। तो आइए बनले चलते हैं, मुलाकात करते हैं जनाबे शकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसे हैं शकील भाई?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपके दुआएं हैं, सब ठीक है।
0: अल्लाह करम रखे, फजल रखे हमेशा आप पर। जी
1: अब आप ठीक आ रही है?
0: जी बिल्कुल ठीक आ रही है।
1: ठीक है, तो तमाम सुनने वालों को मैं तहे से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: इनमें खालिद सलीम मीर साहब हैं, रिजवान रिजवान कियालिया है, अयूब भाई हैं, सूफी अब्दुल करीम साहब, चौधरी खसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब, खालिद शाम है।

दोस्तों अभी अभी हमारी बज़ में शामिल हुए हैं जनाब रिफाकत साहब। हमारे दो लिसनर रिफाकत हैं, एक एडिनबरा से तशरीफ़ लाते हैं और एक हेलीफैक्स से। तो आज शिरकत हो रही है हेलीफैक्स से हमारे मेहमान, जो अपने अहल खाना के हमराह हमारे प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जनाब रिफाकत साहब। और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है और सुनना चाहते हैं ये गीत। इंशाअल्लाह हमने वादा किया था परदेसी मजीद साहब से, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर पेज ऑफ करके ऑन करना पड़ा। सो जैसे ही वो तशरीफ़ लाएंगे उनका तोहफ़ा तैयार है, उनकी नज़र कर देंगे।

और दोस्तों अब हम आपको लिए चल रहे हैं ब्रैडफोर्ड 18, जहाँ से हमारी प्यारी सी बहना शहनाज हमारे हमराह मौजूद हैं और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है और मुझे ढेरों दुआओं से नवाजा है। बिटिया, हमारी भी ढेरों दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शहनाज, प्यारी सी बहना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, सेहत से रखे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और बच्चों की बहारें देखो। तुम्हारी पसंद लेकर हाजिर हैं, कबूल करो, जीती रहो।

दोस्तों, हमारे मोहतरम परदेसी मजीद साहब खारिया गुजरात से हमारे हमराह मौजूद हैं। उनका तोहफा उनकी नज़र करते हैं। आपका मोहब्बत भरा सलाम हम पहले ही सामेईन तक पहुंचा चुके हैं। खुश रहिए, सेहत से रहिए।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
10: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गज़ल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास। आपका हमारा साथ 5 बजे शाम तक है। बहुत दिनों की ताखीर के बाद कलर कहार से, पाकिस्तान से, हसीन वादी से राजा तसव्वुर अब्बास साहब तशरीफ़ लाए हैं और कहते हैं कि अंकल कैसे हैं आप? मियाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कहाँ गायब थे? फिक्र हो गई थी मुझे। राजा तसव्वुर अब्बास साहब हमारी नशियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और उनके हमराह मौजूद हैं उनके दो बहुत प्यारे से दोस्त चौधरी रियाज साहब और अजमल साहब। हम आप सबको दिल की तमाम तर गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं। और तसव्वुर, कोई गीत सुनना चाहें तो ज़रूर बताइए। हमारे ये बड़े खूबसूरत लिसनर हैं और बड़ी हसीन वादी से राजा तसव्वुर अब्बास साहब तशरीफ़ लाते हैं, कलर कहार से। बहरहाल हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं उस तोहफे की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारे एक ऐसे खूबसूरत लिसनर ने जिन्हें आप सब AD चौधरी साहब के नाम से जानते हैं और वो हमेशा मोटरवे M62 पर हमारा प्रोग्राम सुनते हुए सफ़र तमाम करते हैं। और गीत मैंने कहा कोई और बता दीजिए, कहने के नहीं, ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। भाई दिल की बात है, हम तो अहमक आदमी हैं, अगर इतना करीब है तो पेश कर देते हैं आपके लिए। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी AD चौधरी, आमद का बहुत शुक्रिया।

और आइए दोस्तों, अब आपको कलर कहार की हसीन वादी में मौजूद राजा तसव्वुर अब्बास साहब और उनके हमराह उनके अजीज अजान दोस्त चौधरी रियाज साहब और अजमल साहब के लिए तोहफा लेकर चलते हैं। मियाँ, इतनी लंबी गैर हाजिरी मत किया करो, फिक्र हो जाती है कि हमारा शहजादा कहाँ गायब है। तो आइए चलते हैं, राजा तसव्वुर अब्बास चौधरी रियाज साहब और अजमल साहब के तोहफे के लिए। मैंने ये खूबसूरत गीत मुंतखब किया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे यकीन है तसव्वुर आपको और आपके दोस्तों को यकीनन पसंद आएगा। ये बता दूं, मैं भूल गया कि ये गीत डॉक्टर सरताज सिकंदर की आवाज में है। सितंदर सरताज, डॉक्टर सितंदर सरताज की आवाज में है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सितेंद्र सरताज को, जो नगमा सरा थे कलर कहार में मौजूद राजा तसव्वुर अब्बास, चौधरी रियाज साहब और अजमल साहब के लिए। अब हम बहुत इख्तिताम में प्रोग्राम पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारे बड़े मोहतरम लिसनर हैं, नॉर्थ हॉल्ट लंदन से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज़्ज़त और तौक़ीर बढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले खाना के हमराह बैठकर हमारे प्रोग्राम से लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। उन्होंने एक ख़ूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। कहते हैं कि भाई आज हमारे बच्चों की ख्वाहिश यह है कि उनके पसंदीदा फ़नकार रहीम शाह की आवाज़ में ये गीत सुनना चाहते हैं। हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हुए आपके तोहफे की जानिब लेकर चल रहे हैं। आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
7: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
7: 07548419678।
8: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
1: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD9 4QU, 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 260078।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 81-83 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.

कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। फिल्म कोरा कागज़ से लिया गया गीत सामिन ने आपके नाम किया। उम्मीद करते हैं ये गीत आपको पसंद आया होगा। आने वाला गीत चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करते हैं और आपके सभी दोस्तों के नाम, और आपकी लिस्ट देखते हैं और उसके दूसरा गाना जो है ना आपकी लिस्ट के सब दोस्तों के नाम शामिल करेंगे।

और यह गीत तनवीर साहब आपके नाम भी होगा। साथ साथ अशार शामिल करते हैं। ये तल्लक भी बहुत खूब रहा कुछ दिन, ये तल्लक भी बहुत खूब रहा कुछ दिन, तू मेरे नाम से मंसूब रहा कुछ दिन, तू मेरे नाम से मंसूब रहा कुछ दिन, आंख रो रो के तेरी राह तका करती थी, आंख रो रो के तेरी राह तका करती थी, दिल तेरी याद से मगलूब रहा है कुछ दिन, दिल तेरी याद से मगलूब रहा है कुछ दिन, तेरी तस्बीह बनाकर तुझे सोचा करना, तेरी तस्बीह बनाकर तुझे सोचा करना, मशगला ये मेरा मरगूब रहा है कुछ दिन, मशगला ये मेरा मरगूब रहा है कुछ दिन, ये तल्लक भी बहुत खूब रहा है कुछ दिन, ये तल्लक भी बहुत खूब रहा है कुछ दिन, तू मेरे नाम से मंसूब रहा है कुछ दिन, तू मेरे नाम से मंसूब रहा है कुछ दिन।

हम लाख छुपाएं प्यार मगर, हम लाख छुपाएं प्यार मगर, मिलने का मज़ा तो आएगा, मिलने का मज़ा तो आएगा। जी हाँ, मिलने का मज़ा तो आता है ना जी, किसी से भी मोहब्बत से मिलें तो उसका लुत्फ़ एक अपना होता है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाज बनाया चौधरी मुजफ्फर साहब, ये आने वाला गीत जो है ना ये आपके नाम करेंगे। इसमें है चौधरी आपके दोस्तों में है चौधरी आसफ़ रियासत है, चौधरी फरियाद है, परवेज़ ख़ान है, महबूब इलाही जी हम हैं, तारक जुल्फी हैं, जुवेद मीर हैं, तारक साहब तारक भट्ट हैं, शकील भाई हैं, हीरा जी हैं, आमिर शहजाद हैं, और चौधरी उस्मान हैं, आसफ़ीउल्लाह भाई हैं, और वाजिद हेड्सफील्ड और अयूब भाई हैं, और चौधरी मनीर चक्की वाले, और शरफुद्दीन पापा, और ख्वाजा शफीक, सलीम भाई उर्फ रफ़ी, और अतीका जी, और जनाब जंगीर ड्यूसबरी, इन सब के नाम करेंगे, और जनाब जफ़र हीरो और शेख जहूर साहब आपके नाम भी, इसके बाद गीत जो होगा वो आपके नाम करेंगे। ये तलक भी बहुत खूब रहा कुछ दिन, ये तलक भी बहुत खूब रहा कुछ दिन, तो मेरे नाम से मंसूब रहा कुछ दिन, तो मेरे नाम से मंसूब रहा कुछ दिन। शायद इस बात का मतलब मैं समझ ना पाऊँ, शायद इस बात का मतलब मैं समझ ना पाऊँ, क्यों मेरा दिल तुझे मतलूब रहा है कुछ दिन, क्यों मेरा दिल तुझे मतलूब रहा है कुछ दिन। बारशे संग से पहले ये ज़रा सोच तो लिया होता, बारशे संग से पहले ये ज़रा सोच तो लिया होता, तेरा मोहसन तेरा महबूब रहा है कुछ दिन, तेरा मोहसन तेरा महबूब रहा है कुछ दिन। ये तलक भी बहुत खूब रहा है कुछ दिन, ये तलक भी बहुत खूब रहा है कुछ दिन, तू मेरे नाम से मंसूब रहा है कुछ दिन, तू मेरे नाम से मंसूब रहा है कुछ दिन।

0: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: saferaider.co.uk UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

मुस्कुरा के कहो बस कहती रहो, मुस्कुरा के कहो बस कहती रहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। बहुत ही खूबसूरत गीत कमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आपने समाप्त फरमाया। जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब, स्पेशल आपके नाम किया पहला गीत जो था, थोड़ा सा रह गया था, वो गुंजाइश हमने पूरी की। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा।

और आने वाला गीत तारुजुल्फी साहब आपके नाम होगा और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम, जिसमें है सैयद मुलाजम हुसैन, आरफ आसी, बिलाल सुखी, मलक अजीज टैक्सी ड्राइवर, सुल्तान महमूद कराची वाले, परवेज BD5, महबूब BD5 ये हम हैं, और आसफ रियासत, मोहम्मद मुजफ्फर, तारक भट्ट, ड्यूजबरी, मोहम्मद जहांगीर ड्यूजबरी, बाबा जानी, मोहम्मद इब्राहिम, शौकत महमूद, पापा शफीक, पापा शरफुद्दीन, यासिन भट्टी, यासर महमूद, मोहम्मद जुबैर भाई, सफ़ीउल्लाह चौधरी, शब्बीर केतले वाले और जवेद मीर। जी हाँ, आपके सभी दोस्तों के नाम ये गीत करते हैं। और साथ अशार भी पेश करते जाते हैं। पूछते हो बाद इश्क ए दोस्त क्या रह जाएगा, पूछते हो बाद इश्क ए दोस्त क्या रह जाएगा, दिल तो जाएगा मगर एक तजर्बा रह जाएगा, दिल तो जाएगा मगर एक तजर्बा रह जाएगा, चारा साजों ने किया है अभी जहम दिल का गर इलाज, चारा साजों ने किया भी जहम ने दिल का अगर इलाज, जहम तो भर जाएगा पर दाग सारा नहीं जाएगा, जहम तो भर जाएगा पर दाग नहीं जाएगा, घर में रासम टूटने के बाद जुड़ जाए भी तो, घर मरासम टूट के टूटने के बाद जुड़ जाए भी तो, दूरियां मिट जाएंगी पर फासला रह जाएगा, दूरियां मिट जाएंगी पर फासला रह जाएगा, एक ज़रा सी बात पे इतनी मुद्दत तक सनम, एक ज़रा सी बात पे इतनी मुद्दत तक सनम, हमने कब सोचा था तू ऐसा खफा रह जाएगा, हमने कब सोचा था तू ऐसे खफा रह जाएगा, ऐ नज़रअंदाज करने वाले एक दिन देखना, ऐ नज़रअंदाज करने वाले एक दिन देखना, मैं चला जाऊँगा और तू देखता रह जाएगा, मैं चला जाऊँगा और तू देखता रह जाएगा, पूछते हो बाद इश्क ए दोस्त क्या रह जाएगा, पूछते हो बाद इश्क ए दोस्त क्या रह जाएगा, दिल तो जाएगा मगर एक तजर्बा रह जाएगा, दिल तो जाएगा मगर एक तजर्बा रह जाएगा।

आने वाला गीत शहज़ोर साहब आपके नाम और ज़फ़र हीरो साहब आपके नाम करेंगे। भाई शहज़ोर साहब ने फ़ोन करके कहा था उस दिन के एक बोलते हैं या कहते हैं यार हमें भूल गए वो आप, तो नहीं नहीं शहज़ोर साहब क्यों बोल रहे हैं, हम आपके नाम करते हैं खूबसूरत गीत। आने वाला गीत ये आपके नाम भी होगा और ज़फ़र हीरो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम करेंगे।

और साथ साथ मैं देख रहा हूँ ब्रेक आने वाली है, तो देखते हैं हम जी। तो चंद अशआर साथ साथ, चंद अशआर क्या पूरे पढ़ जाता हूँ फिर मैं जब शुरू होता हूँ। कोई इतना प्यार कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है,

सारे का सारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। तो उसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तो उससे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। कैसे किसी की याद हमें ज़िंदा रखती है, कैसे किसी की याद हमें ज़िंदा रखती है। एक ख्याल सहारा कैसे हो सकता है, एक ख्याल सहारा कैसे हो सकता है। यार हवा से कैसे आग भड़कती है, यार हवा से कैसे आग भड़कती है। लफ्ज़ कोई अंगारा कैसे हो सकता है, लफ्ज़ कोई अंगारा कैसे हो सकता है। कोई ज़माने भर की ठोकरें खाकर खुश है, कोई ज़माने भर की ठोकरें खाकर खुश है। दर्द किसी को प्यारा कैसे हो सकता है, दर्द किसी को प्यारा कैसे हो सकता है। हम भी कैसे एक ही शख्स के हो के रह जाएं, हम भी कैसे एक ही शख्स के हो के रह जाएं। वो भी सिर्फ़ हमारा कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ़ हमारा कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है जो कुछ भी मैं चाहूँ, कैसे हो सकता है जो कुछ भी मैं चाहूँ। बोल ना मेरे यार कैसे हो सकता है, बोल ना मेरे यार कैसे हो सकता है। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है।

प्यार वो है जो आँखों से छलकता है, प्यार वो है जो आँखों से छलकता है, जहाँ वो है जो भर के छलकता है, जहाँ वो है जो भर के छलकता है। कमार सन की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत सामीन आपने समाप्त फरमाया। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। आने वाला गीत अजीम साहब आपके नाम करेंगे, वो आपकी तरफ से भाई मकसूद, भाई खुर्म, भाई शान और सब टैक्सी ड्राइवर जितने भी हैं सभी के नाम ये गीत होगा। कभी अल्फाज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, कभी अल्फाज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी ज़ात भूल जाऊं। कभी अल्फाज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी ज़ात भूल जाऊं। उठकर कभी जो तेरे पास से चल दूं, उठकर कभी जो तेरे पास से चल दूं, जाते हुए खुद को तेरे पास भूल जाऊं, जाते हुए खुद को तेरे पास भूल जाऊं। कि कहो तुमसे कह कितना चाहा है तुम्हें, कैसे कहूं तुमसे के कितना चाहा है तुम्हें, कैसे कहूं तुमसे के कितना चाहा है तुम्हें। अगर ये कहने पे तुमको आऊं तो अल्फाज भूल जाऊं, अगर ये कहने पे तुमको आऊं तो अल्फाज भूल जाऊं। कभी अल्फाज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तो से इस कदर चाहूं, तुझे इस कदर चाहूं अपनी ज़ात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं के अपनी ज़ात भूल जाऊं।

जी हाँ, हम तेरे दिल में अब तेरे दिल में हम आ गए, तुझसे चाह करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत था और इसी दौरान ही जनाब से मिला चुकी हैं। आपको पता है मेहमान खुसूसी जनाब शकील साहब, उन्हें

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

सामिन बहुत खूबसूरत गीत आपने समाअत फरमाया, मैं काम में लगा रहा, पता नहीं चला कि किसका नाम था, किसी गुलकार का था वो गीत। उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आया होगा।

आने वाला गीत मशकूर साहब आपके नाम करेंगे और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम ये गीत होगा। साथ साथ चंद अशआर हैं वो भी शामिल करते हैं। आंखों में हमारी ख्वाब पाने की सफ़र सजे हैं, आंखों में हमारी ख्वाब पाने के सफ़र सजे हैं, भागते कदमों तले कई सालों के रत जगे बंधे हैं। ख्वाहिशों के नगर जा बजा संग बिछे हैं, ख्वाहिशों के नगर जा बजा संग बिछे हैं, हमारी मसाफत की थकन में मत उलझो, हमारी मसाफत की थकन में मत उलझो, मंजिल पाने के वास्ते हर मुश्किल से लड़े हैं, मंजिल पाने के वास्ते हर मुश्किल से लड़े हैं, आँखों में हमारी ख्वाब पाने के सफ़र सजे हैं, भागते कदमों तले कई सालों की रत जगे बंधे हैं। सफ़र भागते कदमों तले कई सालों के रत जगे बंधे हैं।

0: Bradford, BD71HR.
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ जाता है।
2: अल्लाह।

तुमसे मिलने को दिल करता है। अरे बाबा, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे सामिन, और आप मिलते रहें और जनाब सुनते रहें ये गीत। इसी ये गीत आज के प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा। इसी बात पर इत्तेफाक करते हुए कि दुनिया कायनात में सबसे हसीन चांद है और उसमें भी दाग है, मुकम्मल सिर्फ हमारे रब के और उसके महबूब की ज़ात है। इंसान खताकार है, उनमें से हम भी एक हैं। दौरान प्रोग्राम हमसे भी कोई गलती कोताही होगी हो तो उम्मीद करते हैं आप अपना समझ के हमें माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे इस जहाँ में और अगले जहाँ में भी। इस दुआ के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें और मुस्कराते रहें। अपने प्रेजेंटर, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई महबूब इलाही को दीजिए इजाज़त। हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और हम सब का अल्लाह निगहबान।

0: on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio.
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट
11: टैक्सी लाइसेंस,
10: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रैडफोर्ड 9627229627222।
2: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
11: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
10: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
8: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
9: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
8: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
9: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
8: 07548419678।
9: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.